0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रे।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Many chances with big tickets.
3: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
2: Plus big spin and weekly e-throws.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Ek tarfa pyar ki taqat hi kuch aur hoti. Aur rishton ki tarah to logon mein nahi batte. Sirf mera haq hai is pe, sirf mera. Agar baazi ishq ki baazi hai to jo chahe laga lo. Dar kaise?
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 102, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट, नो, इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड इन with henna extract and argan oil.
4: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings, and a crispy Parmesan crust. Order now.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Good morning, it's 7:25 on the clock, 31 degrees Celsius right now, humidity at 69%, winds blowing at 8 kilometers per hour, highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 8:09।
2: बॉलीवुड।

0: नॉस्टैल्जिया इज एन अमेजिंग थिंग यार. कुछ कुछ जो चीजें याद रहती हैं, छोटी से छोटी चीजें याद रह जाती हैं. डजंट हैव टू बी लाइक कंप्लीटली बिग एंड फ्लैशी और लाइक सुपरस्टार लेवल, लेकिन जो छोटी से छोटी चीजें हमारी बचपन से जुड़ी हुई होती हैं वो याद रहती हैं. नाउ गॉट जुल्फी विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग जुल्फी साहब, क्या हाल चाल है?
1: बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग.
0: बिल्कुल बढ़िया. एंड वुड यू अग्री विद मी अबाउट द नॉस्टैल्जिया फैक्टर? लैम्सी प्लाजा की हम लोग आज बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स गोना बी मेकिंग अ कमबैक. हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द फैक्ट दैट आवर फेवरेट लैम्सी प्लाजा इज गोना मेक अ कमबैक एज द प्लाजा? कैसा लग रहा?
1: आई वुड हैव बीन मोर एक्साइटेड अगर लैम्सी का नाम लैम्सी ही होता तो. बट स्टिल लाइक इट वाज, इट्स लाइक अ नॉस्टैल्जिया. वाकई मतलब ओल्ड मॉल्स और वो सब चीजें और उसके अंदर मुझे याद है मेरा पहला फोन मैंने हीरोज से खरीदा था जो वो लैम्सी से.
0: या अभी यही वो चीजें होती है ना जो आप, इट्स नॉट रियली अबाउट द इमारत, इट्स अबाउट यू नो द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू यूज्ड टू बी. वहां पे हमने क्या किया था एंड लाइक यू सेड यू बॉट योर फर्स्ट फोन एंड यू नो जो एक बहुत ही देखने में या सुनने में इनसिग्निफिकेंट चीज लगती है लेकिन एवरीबडी रिमेंबर्स इट. इवन इफ यू कम टू दुबई अराउंड 15 ईयर्स अगो फॉर अ कपल ऑफ डेज, यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि ऊपर नीचे करता था एक रस्सी पे. एंड किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ? एंड एवरीबडी इज होपिंग कि यार लैम्सी तो वापस आ गया एज द प्लाजा, लेकिन ये भी वापस आ जाए. व्हाट इज दैट वन थिंग?
1: फाउंटेन, लैम्सी का फाउंटेन भी
0: नहीं, फाउंटेन नहीं,
1: पहले एक और चीज हुआ करता था उसके अंदर.
0: अच्छा हाँ, फाउंटेन का तो पता नहीं बट आई एम श्योर बिकॉज वो यू नो शेल एंड कोर हो रहा है तो दैट्स नॉट, दैट्स गोना बी इन अ न्यू अवतार. लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ए कैरेक्टर था वहां पे कलरफुल सा जो कि ऊपर नीचे जाता था सीलिंग से जुड़ा हुआ एक रस्सी के ऊपर. याद है आपको? आपको याद नहीं है?
1: नॉट एग्जैक्ट. नहीं,
0: क्या बात कर रहे हो यार?
1: वो मुझे पता है कि हाँ, मुझे ये पता है कि हाँ था जो ऊपर नीचे ऐसे जाता था, इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच इट. बट क्या कैरेक्टर था वो?
0: गाइज इफ यू रिमेंबर देन रिमाइंड जुल्फी, कॉल मी राइट नाउ 800-1062 पर. एक कलरफुल कैरेक्टर था जो कि ऊपर नीचे करता था एक रस्सी पे. इट वॉज जस्ट देयर, इट वॉज नॉट लाइक अ पार्ट ऑफ एनी ब्रांड एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन उसको लोग सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड देन व्हेन पीपल से कि यार इट्स गोना कम बैक एज द प्लाजा इज लैम्सी, तो ये जरूर वापस आना चाहिए. सो जुल्फी होल्ड द लाइन, आई एम गोना टेक समबडी एल्स आल्सो ऑन द फोन लाइन. ओके होल्ड ऑन. ओके सो लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन विद अस. गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम?
2: वीरेन.
0: बताइए जुल्फी को बताइए कि कौन सी वो चीज है.
2: आई थिंक इट वाज द क्लाउन, इफ आई एम नॉट,
0: इट वाज द क्लाउन. यस इट वाज द क्लाउन. आई मीन If you tell somebody today कि यार वहाँ पे एक clown था जो कि randomly it was just you know going up and down on a rope, and people will be like, "Yaar, so what's the big deal?" But it is a huge deal out here, and the top question that everybody is asking is कि यार लैम्सी प्लाजा तो वापस आ रहा है लेकिन वो clown भाई साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. So Viren, what are your emotions attached to लैम्सी प्लाजा, and was there one big memory attached to it or what?
2: So basically, I used to stay in Karama and I used to take my kids over there very regularly because it was very close to my house.
0: Right.
2: So obviously, I have seen my kids seeing that clown going up and down and getting excited. And definitely, it has a very good emotional attachment for us. And I also want to add that before this Lamsi Plaza, there was one Lamsi Plaza on the Umre Road.
0: Ooh.
2: Which was a two-level thing, ground plus one. Yes. So that actually got burned down and then this one was established in this place.
0: That must have been even before, like it was what, in the 90s?
2: Yeah.
0: Early 90s mein hoga phir wo. Kyunki 97 mein toh Lamsi Plaza aa gaya tha.
2: Correct. So I came in 89. So that time it was there. Yeah.
0: Wow, like me, you're also a relic, but you're much older than I am. you are from the Jurassic era, but
1: can I add something?
0: Yes, Zulfi, go for it, yeah.
1: Main abhi keh raha tha na ki Lamsi aa raha hai to uska naam Lamsi hona chahiye.
0: Haan.
1: नहीं, अब नहीं.
2: I agree.
1: तो पहला वाला भी जल गया, दूसरा भी जल गया.
0: अरे यार, शुभ बोलो भाई, शुभ बोलो. Maybe that's why the name has been changed. But it's coming back as the plaza. And like we were saying that, you know, there are so many memories attached out there. And there used to be a cinema hall also over there. मैं नाम भूल गया उसका.
1: Cinema, yes.
0: है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी फिल्में देखी थी. And used to be वहाँ पे जाके बड़ा old school feel आता था, right? वो I think वो plastic वाले popcorn मिलते थे वहाँ पे. It was the last surviving plastic popcorn place ever. It was all fabulous. So many memories. Zulfi got his first phone out there. And so yeah, very very kicked. And if
1: पूरा जो area था उसका एक वो
0: vibe अलग था. हाँ,
1: correct. जब लैंपसी बंद हुआ वो पूरा चाम चला गया था. नाउ आई थिंक दैट होल एरिया वुड गेट इट्स वाइप बैक. आई थिंक
0: एब्सोल्युटली दैट पार्किंग लॉट इज गोना बी फुल एंड इट्स गोना बी अ गुड साइन व्हेन यू डोंट फाइंड पार्किंग ओवर देयर. सो सो वीरेन एंड जुल्फी थैंक यू सो मच यार फॉर शेयरिंग दोस मेमोरीज विद अस. May the clown return, yaar. I am also looking forward to the clown returning, Viren. So dekhte hai ki clown wapis aata hai ki nahi. Shell and core ki marammat karo jitni karni hai, lekin clown ko wapis lao. That's what the public demand is saying. So congratulations to all of us who've been here for a while. Lamsey is going to be back. This time not as Lamsey, but as the Plaza.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:11।
1: बॉलीवुड।

0: Roshan Salian?
1: Yes. Good morning.
0: Herzlichen Glückwunsch du fährst nach Deutschland. Herzlichen Glückwunsch du fährst nach Deutschland.
1: I cannot understand. It's a German language, for sure.
0: Arre bhai, herzlichen Glückwunsch du fährst nach Deutschland.
1: Traveling to Germany?
0: Herzlichen Glückwunsch du fährst nach Deutschland, bhai.
1: No, I cannot.
0: Arre Roshan Salian!
1: Yes?
0: Herzlichen Glückwunsch du fährst nach Deutschland. आप जा रहे हो जर्मनी.
1: Yes! Yes!
0: Hey! Hey! Hey! कैसा फील कर रहे हो इस वक्त बताओ सबको यूएई में. How badly do you need this vacation?
1: I really needed a
0: अब जोर से बोलो मेरे साथ. Herzlichen Glückwunsch, मैं जा रहा हूँ Deutschland. Congratulations यार रोशन सालियान, you are the winner. हमने कॉल करना शुरू कर दिया है. कैसा इस वक्त फील कर रहे हो? How excited are you feeling right now? Are you nervous? Are you shaking? Tell us everything.
1: I am just shaking right now and nervous as well. But
0: yeah.
1: Super duper excited. काफी टाइम मतलब कॉन्टेस्ट खेल के भी काफी टाइम हो गया तो मैं जस्ट वेट ही कर रहा था कब आएगा कॉल कब आएगा एंड फाइनली
0: दिस इज द सिक्स्थ वीक ऑफ द कॉन्टेस्ट. बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे फिंगर्स. अब नाउ यू कैन अनक्रॉस योर फिंगर्स एंड टोनेल्स और व्हाटएवर यू हैड क्रॉस्ड देयर. कांग्रेचुलेशंस, यू विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू बिलीव दिस, लेकिन आपका नाम चला गया है गेस्ट लिस्ट में. नाउ अब और कुछ नहीं करना, और कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको करनी है. बताओ क्या?
1: आपके साथ जाना है.
0: बॉस से पहले लीव ले लो भाई. बात हो गई. कैसा क्या माहौल कैसा है काम पे? इज ही ऑर शी अ गुड बॉस या इज देयर गोना बी अ व्हाट एन इशू और व्हाट्स इट गोना बी लाइक?
1: आई एम द बॉस.
0: यू आर द बॉस. हम जा खड़े हो जाते हैं, लीव वहीं से शुरू हो जाती है. कांग्रेचुलेशंस यार रोशन, सो हैप्पी फॉर यू यार. हैव अ वंडरफुल टाइम. ये गारंटी हमारी है दैट यू गोना हैव एन अमेजिंग टाइम, अ ट्रिप ऑफ योर लाइफ टाइम. इट्स ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप, राइट? एंड द फ्रेंडशिप्स दैट यू गोना मेक आउट देयर, द कनेक्शंस, दे गोना लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम. सो
1: So I just want to thank 106.2 team for making it possible, and special thanks to you as well.
0: Thank you very much.
1: Making my call.
0: Shit. Thank you so much. अब बोलो हर्जलिकन ग्लुकवंश डू फर्स्ट लास्ट डॉयचलैंड. सारी जर्मनी सीख लो.
1: प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
0: कर ले भाई, प्रैक्टिस कर लो. एंड वी कांट वेट टू बी ऑन द ट्रिप विद यू. ऑलराइट, सो रोशन कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. टेक केयर. जैसे कि हमने बताया कि वी स्टार्टेड कॉलिंग द विनर्स, ओके, आफ्टर दिस इज द सिक्स्थ वीक ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ द बिग चेक इन टू जर्मनी एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग. तो रोशन की तरह अगर आप भी जीतना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वी गॉट जस्ट अबाउट अ कपल ऑफ मोर डेज फॉर द कॉन्टेस्ट एज वेल. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट्सएप करो या बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर 0543091062. बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
2: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी, एथनिक पार्टनर बावरी एंड खोरा, ज्वेलरी पार्टनर मीना ज्वेलर्स, ट्रैवल पार्टनर AFC Holidays, एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए। पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
2: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
5: It is 9:20 on the clock on this Wednesday. It's 33 degrees Celsius right now. Humidity at 58%. Highs of 36, lows of 30 degrees.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: Big. Big. 106.2.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
4: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
5: Many chances with big tickets.
6: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
5: Plus big spin and weekly e-throws.
6: Buy now with bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: कर ही नहीं सकते. चाहो भी तो नहीं कर सकते हो.
9: तो क्या करते हो आप लब्बू?
10: I'm a qualified pharmacist.
9: ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. लेट्स सी आपका उसके पास सही जवाब है या फिर नहीं है. अच्छा, आप मूवीज देखते हैं? एनिमेटेड फिल्म्स?
10: एनिमेटेड फिल्म्स अभी थोड़ा कम है. पहले देखते थे
9: बचपन में. देखा है?
10: Yeah, kind of.
9: फिर तो शायद हो सकता है इसका जवाब पता हो. Which German fairy tale character has super long hair that is let down from a tower window? Your options are Rapunzel, Cinderella or Thumbelina.
10: First one only.
9: It is Rapunzel. That's the correct answer. देखी नहीं देखी फिल्म आपने ये वाली?
10: No. I just heard about some stories, you know, the Pico books and all. That's only.
9: ये miss out हो गई है. कोई बात नहीं, जर्मन जा रहे हो. थोड़ी सी जर्मन नॉलेज तो बढ़ चुकी है अभी तक.
10: Right.
9: Let's see. Congratulations. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है. You are one step closer to big check into Germany.
10: Thank you.
1: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
11: It is 9:28 on the clock and let's take a look सबसे पहले at 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Usual hotspots पे usual traffic आपको मिलेगा 8 से 9 मिनट का. The things are much better at 88 and this going towards safe zone. यहाँ पे 6 मिनट की देर ही अब बच गई है. Then there is 311 जहाँ पर there is a lot of traffic आज रोज के मुकाबले. And this is Motor City से all the way to Production City. You'll find traffic slow moving and then Production City heading north also going towards Sports City. यहाँ पर मिलेगी आपको 4 से 5 मिनट की देर. इनकेस आपको कुछ दिखता है, give me a call 800-1062 पर.
12: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
13: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
1: Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: I've got Ashish with me on the phone line. Ashish Jaswani, good morning.
2: Very good morning. Good morning, everyone.
1: कैसे हैं आप आशीष जी?
2: Superb feeling.
1: आज कितने बजे आपका लैपटॉप कितने बजे खोला आपने?
2: Exactly sharp 8:30.
1: अकाउंटेंट है आशीष एंड इस बात का भी एक अकाउंट रखा है आपने कि आपने कितने मैसेज हमें किए हैं?
2: कच्चे खिलाड़ी हो यार
1: मुझे लगा कि एकदम एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से ऑड नंबर के आपने मैसेज हमें किए हैं. बट यू सेंट अ लॉट ऑफ मैसेजेस. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट आशीष. बट आई वांट टू टेल यू दैट यू आर यू नो नॉट द फर्स्ट पर्सन दैट आई कॉल दिस मॉर्निंग. देयर इज समबडी हु इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल राइट नाउ. जब मैंने उनको कॉल किया ना, सो दे वर गेटिंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड देन दे हैड द चॉइस कि मैं मीटिंग में जाऊँ या मैं कॉन्टेस्ट खेलूँ और जर्मनी जाऊँ. अगर आपको ये चॉइस दी जाती तो आप क्या चूज करते आशीष?
2: I would have definitely selected Germany because meeting तो होती रहती है, like you know you can like be 5 minutes 10 minutes late, but yeah I mean why miss this big opportunity?
1: लेकिन ऐसा मौका थोड़ी बार बार आता है यार.
2: Exactly. Right. So just to like you know 5-10 minutes का आप break ले सकते हैं, but like this one I mean this is worth going for.
1: और कोई भी मतलब आपके जो employers employees हैं जो भी meeting में बैठे हुए उनको भी अगर आप कह दो कि यार मेरे पास जर्मनी जाने का मौका है, 5 मिनट लेट आऊंगा, थोड़ा वेट करो यार, कॉफी ऑफी पियो, मैं आ रहा हूँ, तो समझ जाएंगे ना यार.
2: Exactly. In fact, sometimes meeting starts late also, so it doesn't. No one comes reaches on time.
1: हाँ, फालतू कारण से जब meeting late शुरू होती है तब तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जर्मनी जाने का मौका मेरे पास है यार, तो ये तो मौके पे चौका मैं मारूंगा. चलो ये तो हो गई टाइम पास की बात, लेकिन चलो काम पे हम लोग आ जाते हैं. Chance for you to get your name on the guest list. One step closer आप हो सकते हैं. Okay, just 2 to 3 more days. So, एक तो congratulations कि आपका number लग गया. So close to the end of the contest. Okay, so now what's going to happen is, मैं आपको दूंगा 10 second to answer a very simple question about Germany. थोड़ा vibe check हम लोग कर रहे हैं before heading out to Germany. Okay, if you answer that question, your name goes into the draw and you'll be one step closer to winning this trip to Germany. बोलो, done deal?
2: Done, sir.
1: Okay, are you ready?
2: Ready.
1: Your question for today is, which sport is the most popular in Germany, played by famous teams like Bayern Munich? And your time starts now. Options hain. Option A, is it football or soccer? Option B, is it cricket? Ya option C, baseball? Is sport ka is saal... Kaun sa sport hai which is the most popular in Germany, played by famous teams like Bayern Munich? Bayern Munich naam ki टीम का नाम अगर आपने सुना है तो कौन सी स्पोर्ट में है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट या सी बेसबॉल? क्लू फॉर यू, इसी साल इस स्पोर्ट का वर्ल्ड कप भी हुआ था.
2: फुटबॉल.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. जाओ मीटिंग वालों से कह दो कि मैं आधा घंटा और लेट आने वाला हूं, बिकॉज मैं सेलिब्रेट करूंगा अब क्योंकि आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर. कांग्रेचुलेशंस. हाउ डज दिस फील? एंड बताओ कि कितनी बेहद जरूरत है आपको इस वेकेशन की.
2: If I tell you, my last break was like in way back, like many, many years back. I can't like, you know, maybe before COVID.
1: Ooh.
2: That was like, you know, before like I took a proper break.
1: क्यों ऐसा क्यों? पापा बन गए क्या हो गया?
2: No, nothing like that. But
1: वो एक कारण होता है जिससे कि लोग कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया, बिकॉज दैट कंप्लीटली पुट्स योर लाइफ इनटू अनदर गियर. बट व्हाई बिफोर कोविड से आपने कुछ मतलब आई होप एवरीथिंग इज ओके.
2: या एवरीथिंग इज ओके, बट आई डिडंट गेट टाइम फॉर मायसेल्फ.
1: राइट राइट.
2: बट बिजी विद थिंग्स एंड देन लाइक यू नो काइंड ऑफ चेंज हैपेंस.
1: बेसिकली छापने में ज्यादा फोकस था आपका. राइट नाउ दैट अच्छा खासा इन्होंने छाप लिया है आशीष जी ने, अब और छापने वाले हैं, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप, इसमें भी कोई खर्चा नहीं भाई. आशीष परफेक्ट, एकदम मजा नहीं लाइफ.
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच,
1: ऑल द बेस्ट. बस एक काम बच गया है कि आपका नाम अगर ड्रॉ में से निकला तो आप जाएंगे फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप टू जर्मनी. सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस, नॉट फॉर टू लॉन्ग, फ्राइडे तक ही ये कॉन्टेस्ट है. सो ऑल द बेस्ट. या
2: थैंक यू सर.
1: कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज आशीष, हमारे आज के विनर हैं, आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं आशीष जसवानी. इनके तरह आप भी व्हाट्सएप करते रहो. क्या करना है आपको, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम व्हाट्सएप करते रहो 0543091062 पर. दिस इज द बिग चेक इन टू जर्मनी.

0: व्हाट्सएप करते रहो. क्या करना है आपको, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम व्हाट्सएप करते रहो 0543091062 पर. दिस इज द बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: घटके। ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 10:08।
2: बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Kushua!
3: Sachi! There's so much pressure on you, Sachi. You always have to be honest.
4: Yeah, yeah, true.
3: बहुत प्रेशर वाली जिंदगी होगी तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती होगी साची.
4: डर लगता
3: है. बिल्कुल. फिलहाल थ्री थिंग्स दैट यू डू बिफोर यू गो टू बेड.
4: आई स्टैंड अप. अरे आई बेड.
3: टाइम खत्म. फटाफट साची, यू हैव टू बी क्विक आल्सो.
4: ओके.
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर रेड.
4: रोज, केसर एंड
3: राइस. ओके. केसर कौन सा लाल केसर है यार? तो सैफरन इज ऑरेंज. इट्स अ कलर.
4: नो, द एडिबल सैफरन व्हिच यू पुट इन योर खीर.
3: आई नो बट इट्स कॉल्ड सैफरन बिकॉज इट्स सैफरन कलर. ओके. तीन गाने जिनमें दिल आता है.
4: दिल ही तो है
3: और
4: दिल का क्या स्पोर्ट.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It's 10:25 on the clock and let's take a look. सबसे पहले the usual suspects. आपको हल्का बल्का ट्रैफिक मिलने वाला है heading south going towards Dubai from Sharjah at both 311 and E11 as well. And also you'll find a bit of congestion northbound production city ki taraf jata hua on 311 and then the junction of 44 and 311 at JVT. You'll find 4 se 5 minute ki der in both directions.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1999 dirhams per month for a 12 month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 10:40. सबसे पहले that eastbound traffic आपको मिलने वाला है E88 पे. अभी भी 9 मिनट की देर है going towards safe zone. Then there is the usual 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. You'll find 6 to 8 minutes का delay there as well. Then there's industrial area 6S112. Beirut Street पर Medina Mall के बाहर heading south. Also Mohesna on 311. मिर्दिव सिटी सेंटर के बाहर हल्का फुल्का आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलने वाला है. एंड ऑल्सो देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 ऑन E44. दैट्स अलखेल रोड एंड शेख जायद रोड पर. व्हेन यू हेड साउथ आफ्टर ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट, यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा. आज हेसा स्ट्रीट पे एक इंसिडेंट इज बीइंग रिपोर्टेड एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स E44 फ्रॉम 311.
2: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहोगे तो नहीं कर सकते हो.
2: तो क्या करते हो आप लब्बू?
3: I'm a qualified pharmacist.
2: ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. लेट्स सी आपका उसके पास सही जवाब है या फिर नहीं. अच्छा, आप मूवीज देखते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स?
3: एनिमेटेड फिल्म्स अभी थोड़ा कम है. पहले देखते थे.
2: बचपन में देखा है?
3: Yeah, kind of.
2: फिर तो शायद हो सकता है इसका जवाब पता हो. Which German fairy tale character has super long hair that is let down from a tower window? Your options are Rapunzel, Cinderella, or Thumbelina.
3: First one only. Yeah, okay, thank you.
2: It is Rapunzel. That's the correct answer. देखी नहीं देखी फिल्म आपने ये वाली?
3: No. I just heard about some stories, you know, the Pico books and all. That's only.
2: ये miss out हो गई है. कोई बात नहीं, जर्मन जा रहे हो, थोड़ी सी जर्मन नॉलेज तो बढ़ चुकी है अभी तक.
3: Right.
2: Let's see. Congratulations. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है. You are one step closer to big check into Germany.
3: Thank you.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5pm. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: color, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2.
1: तुम भी सॉरी तान्या, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, that's not my thing.
0: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड आज शो पर जीतने वाला है कोई बिग चेक इन टू जर्मनी की टिकट. फाइनल कॉल फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. कौन जीतेगा आज? कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: आई वाज इन द बालकनी लास्ट नाइट एंड क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी नहीं थी तो बहुत आराम से वॉक हो पा रही थी यार। एंड इट्स राइट नाउ एज वेल 51% ह्यूमिडिटी विद 36 डिग्री टेम्परेचर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. मुझसे कोई पूछे ना आज भी इस इरा में भी कि मेरा गिल्टी प्लेजर क्या है, क्या देखने का गिल्टी प्लेजर है, इट विल ऑलवेज बी कॉफी विद करण, जो कि सीजन 9 शुरू होने वाला है अक्टूबर 14th को. एंड इस सीजन में कौन कौन से सेलिब्रिटीज आएंगे, वी गोना वॉच इट. लेकिन यार ये गॉसिप वाली बात तो है, जो रैपिड फायर राउंड है ना कॉफी विद करण का, भाई उसको कोई बीट कर ही नहीं सकता. Well, the list is here. कौन कौन से celebrities आने वाले हैं बताती हूँ. Until then, keep it locked to Big 106.2. अखियां गुलाब by मित्रा is coming your way.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. अक्टूबर 14 से कॉफी विद करण का सीजन 9 शुरू होने वाला है एंड द गेस्ट लिस्ट इज हियर. सलमान खान आने वाले हैं और पहली बार तो उनका फर्स्ट एपिसोड ही हो जाएगा शायद. देन वी हैव द डुओज विजय देवकोंडा एंड रश्मिका मंदाना, अहान पांडे एंड अनीत पद्दा, विकी कौशल एंड दिलजीत दोसांझ. भाई ये वाला एपिसोड ना मेरा फेवरेट होने वाला है. मैं पहले ही एक्सपेक्ट करके बैठ गई हूँ, पहले ही डिसाइड करके बैठ गई हूँ. एंड जस्ट नॉट दैट, करीना कपूर खान इन कॉफ़ी विद करण इज माय बेस्ट गिल्टी प्लेजर. मतलब जो वाइब उनकी कॉफी विद करण के काउच पर निकलती है ना, करीना कपूर खान बेस्ट एट कॉफी विद करण. अक्षय कुमार एंड अजय देवगन भी आने वाले हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा अडवाणी, वरुण धवन, कृति सेनन, समय रैना एंड फराह खान. वेल ये वाला एपिसोड एंड वो दिलजीत वाला एपिसोड जो है ना भाई, दोनों में टक्कर तो बहुत मस्त होने वाली है.
3: तारा लाए मस्करा, लकियां निभाए रखना.
2: अखियां मेरी गड़ी हुई यार. अक्टूबर 14 से एपिसोड बाय एपिसोड आपको ना अपनी जिंदगी में एक रियलिटी शो या फिर एक ऐसा शो चाहिए होता है जो गॉसिप भी दे दे, ठीक है, उसके बाद आपका दिल बहला के रखे, तो फिर आपको लाइट हार्टेड लगता है भाई सब कुछ.
4: तो समझो ना मेरे दिल की इल्तिजा.
2: है कोई समझने वाला मेरी ये बात कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक शो ऐसा चल रहा हो जो आप रोज देखो. लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पे. व्हाट इज इट विद यू, कौन सा ऐसा शो है जो आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, आजकल देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो? 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड वन मोर फिल्म अनाउंस हो चुकी है जैकी श्रॉफ एंड शरद केलकर की, जिसका नाम है काली खेती. इट्स गोइंग टू बी अ रूरल हॉरर फिल्म. लेकिन ये जो हॉरर फिल्म्स आजकल रिलीज हो रही है ना, आई एम लविंग देम, ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसमें कॉमेडी यूज की गई है. जंप स्केयर्स हैं फॉर द हॉरर, लेकिन कॉमेडी पंचेज ऐसे हैं कि ताकि आप ना हुक रहो. लेकिन वन फैक्ट फॉर द फिल्म यार, जो हॉरर जॉनर जो हमने बचपन से शुरू किया है देखना, उसके बाद जब कॉमेडी बीच बीच में आ जाती है ना भाई, उसकी एकदम वाइब बदल जाती है.
2: गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल.
1: दिस वन काली खेती जो है शरद केलकर की फिल्म एंड जैकी श्रॉफ, कमिंग ऑन बोर्ड 23rd of October. लेकिन लास्ट जो शरद केलकर की फिल्म आई थी, दैट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें विकी कौशल भी थे. एंड व्हाट अ मैग्नानिमस मूवी. अगर आपने अभी तक नहीं देखी, इट वाज रिलीज इन 2025 आई गेस, देखो जरूर जाके. एंड 23rd October, काली खेती कमिंग इन सिनेमाज. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Iraq and across the region. The authorities in Puntland in Somalia say five crew members of a hijacked oil tanker were killed by pirates before security forces launched a planned rescue mission. A court in Tokyo has ruled that the human voice is legally protected after one of Japan's best singers had featured an artificial intelligence clone of his voice. But the judge dismissed a demand for Kenjiro Suda for the removal of the videos. TikTok had argued the audio represented a generic male voice.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: Chumpi, sorry, Tanya. हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए. That's not my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड इन दिस आवर आपको पता लगने वाला है कि किसकी सीट रिजर्व हो चुकी है फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. कौन जाने वाला है उस फ्लाइट में हमारे साथ टू दिस ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप बिग चेक इन टू जर्मनी. इतने मैसेजेस आए यार, इतने मैसेजेस आए. बहुत लोग शॉर्टलिस्ट हुए लेकिन आज फाइनल डे है. आज पता लगने वाला है कि कौन फाइनली हमारे साथ इस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप पर जर्मनी जाने वाला है. अब क्या क्या सोचा है, जाके क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, बिकॉज नाम मेरे पास आ चुके हैं. किसका निकलेगा वो अभी बताती हूँ. इन अ बिट अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: My car.
1: Pack your bags. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
4: The Beat of Bollywood.
5: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ एंड फाइनली वो वक्त आ चुका है जब बताया जाए कि किसने अपनी सीट रिजर्व कर ली है फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी. कॉल करती हूँ, ये इतनी बड़ी खुशखबरी जिसको सुनाने के लिए मैं ही इतनी एक्साइटेड हूँ कि कौन जाने वाला. लेट मी कॉल एंड लेट्स सी वो फोन भी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं. हेलो
6: हेलो
5: हेलो. हाय हेतल.
6: Hi Abhi, how are you?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका दिन?
6: I'm very good. Hectic चल रहा है, meetings.
5: ओहो, इतना hectic, फिर छोटा मोटा तो कुछ मूड अच्छा करने के लिए कुछ तो बनता है नहीं?
6: Correct.
5: अच्छा अभी आपका प्लान क्या है, क्या आज का प्लान क्या करने वाले हो आप?
6: कुछ नहीं, घर at 6 o'clock. That's it. I'll leave at 6 and फिर घर, nothing else after that.
5: हितल आपने पार्टिसिपेट किया था ना?
6: हाँ करेक्ट.
5: कैसे किया था?
6: जर्मनी के कॉन्टेस्ट में. आई सेंट अ टेक्स्ट बिग चेक इन एंड माय नेम एंड लेट्स होप के हो जाए.
5: एक्सपेक्टेशन कितनी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100?
6: बहुत ज्यादा. आई एम सुपर सुपर सुपर एक्साइटेड. आई कांट इवन टेल यू इवन इफ आई गेट अ चांस.
5: अभी भी मीटिंग में हो क्या आप?
6: नहीं नहीं अभी नहीं हूँ मीटिंग.
5: बैठे हो खड़े हो?
6: बैठे हूँ.
5: वेरी नाइस, क्योंकि आप चल रहे हैं हमारे साथ बिग चेक इन टू जर्मनी.
6: नो वे.
5: अरे नहीं भाई, सच में बता रही हूँ मैं. आई एम नॉट किडिंग.
6: आई कांट प्रोसेस इट. प्रोसेस ही नहीं हो रहा मेरे से.
5: देखो कितना इजी था भाई. देखो अभी हेक्टिक डे को हमने बेस्ट बना दिया कि नहीं?
6: डे ने योर बेस्ट बना दिया. यू मेड माय ईयर. You made my day of course, but my year most importantly, and I was waiting for a vacation.
5: Vacation? अब तो छुट्टी ही छुट्टी. Instagrammable photos ही photos, reels ही reels.
6: Of course, with the Big FM team.
5: Yes. अब मुझे बताओ कि अब आपके दिन का plan क्या है? ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप किसको देने वाले हो सबसे पहले?
6: पहले my mom dad for sure. Because when जब मैंने contest में participate किया था, I called my dad and I told him I just wish and I really wanted to go for a trip. This year, but it couldn't happen because of the situation and everything. So I called him, मैंने participate किया and then he was like, you know, मिल जाएगा.
5: मुझे लगता है आपके पापा की manifestation काम आ गया.
6: Of course, तो पहला call पापा को जाएगा and he will be more happy for me. More than me.
5: ये जो आपकी मीटिंग चल रही है ना ऑफिस में, मुझे लगता है कि आप ही केक कटवाने वाले हो कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, आप अपनी मीटिंग्स करते रहो.
6: पूरा ऑफिस मुझे देख रहा है, क्या हुआ भाई सीएलिंग.
5: Congratulations Hetal once again and see you on the trip now. यार बहुत मजा करने वाले हैं.
6: Thank you so so so much for the opportunity of me.
5: Thank you Hetal. Bye.
6: Thank you. Bye. Have a nice day.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood, The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: InsuranceMarket.ae.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: भाई हेतल का मौसम तो आज के लिए बदल चुका है, लेकिन आपके लिए स्टिल 36 डिग्रीज आउट देयर विद 52% ह्यूमिडिटी।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ. एंड यार जब आप ड्राइव पे जाते हो, गाड़ी पे जाते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने बंदे के साथ, दैट्स अनदर वाइब. लेकिन जब अपनी गर्लीज गर्ल के साथ जाते हो ना गाड़ी पे, वो लहराते हुए बाल और वो जो आप बॉन्डिंग करते हो एक दूसरे के, यू नो, कपल स्टोरीज पर, भाई ये वाइब कोई नहीं मैच कर सकता. और अगर आपने अभी तक ये वाली गेड़ी नहीं करी है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ ड्राइव नाउ. यू कैन लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर्थ एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12-month प्लान. ऑल यू हैव टू डू इज विजिट selfdrive.ae. TNC अप्लाई ऑफ कोर्स. लेकिन जो ये गर्लीज गर्ल की वाइब है ना, वो तो हमेशा ही टॉप नॉच रहती है यार. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: No.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट,
2: झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट,
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Meena Jewelers. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
5: Hey, jaldi hata, tera khatana. Jal hata. Hey, jaldi hata, sunda.
6: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: Starting with Sheikhzad Road, Dubai Marina and JLT वाली साइड आपको काफी ट्रैफिक मिलेगा. उसके अलावा अलखेल रोड पर there is slower movement around अलकूज मैदान और रसल खोर. हेसा स्ट्रीट पर भी तगड़ा कंजेशन है अराउंड अलबर्शा एंड दुबई स्पोर्ट्स सिटी. उमसुकेम पर फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है बट देयर इज ट्रैफिक अराउंड अलबर्शा साउथ. इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स नादलशिरवा ट्रैफिक इज बिल्डिंग ऑन दुबई आलिन रोड. शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर देयर आर स्लोअर सेक्शंस अराउंड जुमेरा विलेज सर्कल एंड अरेबियन रैंचेस. अगर आप शारजा जा रहे हो देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन E11 एंड E311 ऑफ कोर्स कॉरिडोर्स पर. कंपैरेटिवली स्मूदर ऑप्शंस हैं E611 एंड देन देयर इज ट्रैफिक फ्लोइंग वेल बेटर एक्चुअली अराउंड दुबई सिलिकॉन ऑफिसेज एंड एकेडमिक सिटी. अगर कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
3: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
6: Big 106.2. Big.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: है झूठा, यही निकलता है मुंह से जब भी इंसान का ना ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो ना आपको इश्क में छोड़ती है और ना ही ब्रेकअप में छोड़ती है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, और मैं खाने की बातें बहुत करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर चुके होगा कि यार मैं खाने की ही बात करने वाली हूँ। नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ यार। खाना ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका मूड अपलिफ्ट कर सकता है, आपको बैड मूड से गुड मूड में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके बिना ना खाना हजम होता है, कभी कभी तो एम ही ले लेते हो। मैं बात कर रही हूँ पीने की। कॉफ़ी इज दैट वन थिंग जो आपके खराब मूड में, अच्छे मूड में, आप सोचते हैं यार बंदा ना कैफे चला जाता है। कल है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, एंड अगर आप UAE में हो, बहुत सारे कॉफ़ी आउटलेट्स पे बहुत तगड़े डिस्काउंट्स, बाय वन गेट वन चलने वाला है। अपनी पूरी गर्ल गैंग को लेकर, अपने पूरे ग्रुप को लेकर आप कॉफ़ी पीने जा सकते हो। ये मैं एक दिन पहले बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। अब कॉफ़ी से यार किसको प्यार नहीं है। हाँ, मैं खुद को माचा गोली बोलती हूँ, लेकिन कॉफ़ी नहीं यार, कॉफ़ी सुकून है। Keep it locked to Big 106.2 and happy coffee for tomorrow.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and it's Wednesday for you, it's Monday part 3 for me and Wednesday एक लौता ऐसा दिन है यार जो निकलता ही नहीं है.
2: आज जाने की जिद ना करूं.
1: फिर बीच में एक ऐसा वक्त आता है जिसको हम कहते हैं लंच टाइम. लेकिन अगर अभी तक आपने लंच नहीं किया है अभी मत करना, रुक जाओ, हम पहले खेल लेते हैं, खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि उसके बाद तो तगड़ी भूख लगने वाली है यार आपको. All you have to do is message करो मुझे इस WhatsApp नंबर पर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे खाने के राउंड, और ये खेलते खेलते आपका वेंसडे भी निकल जाएगा और आप ओवन मूवी टिकट्स भी जीत जाओगे. WhatsApp नंबर है 0543091062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo, khush hua.
5: Ye hum announce karne wale hain apna pehla winner. Yes, the very first person jo finalist bana hai ya bani hai, ye aapko abhi pata chalega. The first person to confirm their seats for the big check into Germany this year. So let me give a call and surprise them.
6: Hello.
5: हेलो, आपके फोन की घंटी क्यों नहीं बजी?
6: अरे आई थिंक आई एम इन मेट्रो, दैट्स व्हाई.
5: ओह यस, इन मेट्रो. शिवानी,
6: इज इट व्हाट दिस? ओह माय गॉड,
5: व्हाट डू यू थिंक? व्हाई एम आई प्लेइंग ढोल धमाका फॉर यू?
6: आई हैव बीन सिलेक्टेड.
5: यू आर फ्लाइंग विद अस टू जर्मनी.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
8: मुझे खुद का पता था यार. अगर हूँ तो हूँ.
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: 36 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन अभी फिलहाल जो है 45 का एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा है. एज ऑफ नाउ इट्स 54%, लेकिन शाम तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों घटने वाले हैं.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द टाइम वी प्ले खाओ पियो ऐश करो. लेट्स सी इन द कॉल. हेलो.
3: हाय.
2: हाय, कौन बात कर रहे हैं?
3: सारा.
2: सारा, आपने लंच कर लिया?
3: यस.
2: आप कहाँ से हो सारा?
3: मुंबई.
2: तो फिर मैं वड़ा पाव से शुरू करूँ? That's the stereotype you use, है ना? अच्छा, कोई अगर बॉम्बे जाए पहली बार तो आप क्या रिकमेंड करोगे खाने के लिए?
3: Yeah, so it is vada pav, that's the staple.
2: फिर तो stereotype नहीं हुआ, फिर तो मैं खा चुकी हूँ.
3: Then let me think. Actually, even the chaat.
2: Chaat? यार वो तो दिल्ली की famous है, दिल्ली की chaat.
3: No. I would prefer Bombay.
2: वो तो चलो फेवरेटिज्म है तो कोई बात नहीं, मैं जाने देती हूँ. Okay, we'll start the game. Okay. So what would you have for lunch, सारा? अगर आपको चॉइस दी जाए, शाही पनीर या जीरा राइस?
3: शाही पनीर.
2: शाही पनीर या छोले भटूरे?
3: छोले भटूरे.
2: छोले भटूरे या राजमा चावल?
3: राजमा चावल.
2: राजमा चावल या फिर दाल मखनी प्लस पराठा?
3: राजमा चावल.
2: राजमा चावल या फिर मटन बिरयानी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर पनीर टिक्का रैप?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर हाका नूडल्स?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर मंचूरियन प्लस फ्राइड राइस?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर थाई करी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर सुशी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर चीजी पिज्जा?
3: मटन बिरयानी.
2: यार नहीं हो पा रहे इसके, मटन बिरयानी के छोड़ देती हूँ मैं. एक्चुअली आई विल गिव इट टू मटन बिरयानी ओनली. आपको बनानी आती है?
3: नो.
2: No. Why?
3: I would not like to try. I would not like to try. This is something that has to come from out.
2: क्यों? मतलब आपको पता है इतना विश्वास है खुद की कुकिंग पे कि आप अच्छी नहीं बनाओगे?
3: No. It's a very traditional thing. So you know, something that people who make regularly only they can fix it.
2: What do you cook, Sara?
3: So I cook everything besides the biryani.
2: ये तो वो बात हो गई कि लोग अपनी कुकिंग की इतनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, लेकिन आपने सच बता दिया कि नहीं यार मुझसे नहीं बनेगी, छोड़ दो, रहने दो.
3: करेक्ट.
2: वेल दैट्स वन थिंग फॉर मी इज चाय. मुझे बड़ी पसंद है लेकिन मैं चाय अच्छी नहीं बना पाती हूँ यार. तो अगर आप अच्छी चाय बनाते हो तो आप मुझे पिला देना.
3: प्लीज कम ओवर, फील फ्री.
2: थैंक यू सो मच सारा फॉर कॉलिंग. एंड आपको मिलती है आज की ओपन मूवी टिकट्स. If you want to win open movie tickets, all you have to do is play this game with me. We call it Khao Piyo Aish Karo. Message karo mujhe is WhatsApp number par 054-309-1062.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड यार मैंने नोटिस किया है, आप रेगुलर डे पे कुछ ना कुछ यू नो जीन्स टॉप पहन लेते हो, ड्रेसेस पहन लेते हो, लेकिन जिस दिन आप एथनिक पहन के आते हो ना, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर डे पे एथनिक पहन लिया ही है अगर
3: हीरे कुफर करे आँख ना खड़े बॉडी संग मर मर पहुंच तो
2: पर होता ना कंपटीशन खुद को कॉम्प्लीमेंट करने का, मैं उसमें फर्स्ट आ जाती। वेल आप मेरा एथनिक लुक चेक कर सकते हो 106.2 बिग एफएम के पेज पर, मैंने स्टोरी अपलोड की है। मेन बात तो बताना ही भूल गया यार, पोल वहां पर आपके लिए एक रेडी है। अगर आपने खाओ पियाज करो नहीं खेला मेरे साथ, वहां खेल सकते हो। आई हैव पुट अ पोल, अपना आंसर जो है वहां पर क्लिक करके वहां जाके वोट करो। अंटिल देन मैं फिलहाल कंटिन्यू रखती हूं यार अपने कॉम्प्लीमेंट्स। I'll be track coming up your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 36 डिग्रीज आउट देयर बट इट एक्चुअली फील्स लाइक 45 एंड अगर आप इंडोर्स हो तो जैकेट वैकेट लगेगी बिकॉज इंडोर्स काफी ठंड बढ़ जाती है। बाहर जो है ह्यूमिडिटी फिलहाल 52% पे चल रही है विच मेक्स मी कैलकुलेट कि आज रात की वॉक भी जो है ठीक ठाक हो जाएगी बिकॉज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों अभी कम होंगे।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे। और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मैं बात कर रही थी यार कि जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलती हूँ ना, किसी भी नए बंदे से मिलती हूँ, वो मुझे अपना नाम बताते हैं, हाय माय नेम इज एक्स वाई जी, है ना, और कैसे हो, कैसा चल रहा है दिन, थोड़ा अपना स्टोरी बात करी, स्मॉल टॉक करी, लेकिन ये 5 मिनट या फिर आधे घंटे की बात के बाद भी मुझसे वो इंसान पूछ ले, ओ नाम नाम क्या था, मैं नाम ही भूल जाती हूँ। आई रियली रियली रियली रियली विश कि मेरा जो दिमाग है, ब्रेन सेल जो है, एक दो काम करें और मुझे उनका नाम याद आ जाए, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, आई एम नॉट अलोन। और मुझे लगता था कि यार मेरी दिक्कत है, मेरे में ही दिक्कत है, लेकिन एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है। नाउ द स्टडी सेज फॉरगेटिंग समवन्स नेम माइट एक्चुअली मीन यू हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस। देख रहे हो आप, मतलब अगर आपको लगता है आप भी मेरी कैटेगरी में हो कि नाम भूल जाते हैं लोगों का, आपको लगता था कि आप में दिक्कत है, नो इट्स नॉट यू। हमने अबव एवरेज इंटेलिजेंस के साथ दिल लगाया है, इसलिए हमें लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। इफ यू थिंक यू आर इन द सेम कैटेगरी एज मी इस वाले में, बताओ यार मुझे 800-1062 पे कॉल करके। ऐसे फील होता है ना कि मैं अकेली नहीं हूँ। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
3: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's henna speedy easy hair color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with henna speedy easy hair color made in Italy.
4: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
5: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 mein hoon Avni aapke saath. It's Wednesday for you. It's Monday part 3 for me. Lekin main is Monday part 3 ko na aur enhance kar deti hoon. Happy mode mein jaane ke liye na main vacation plan kar leti hoon. Ki yaar koi baat nahi, main apni chutti ki baat to soch hi sakti na. By the way, last vacation waise bhi kaafi last ho gayi thi yaar. नेक्स्ट वाली की झलक ही दिख जाए यार, वही बहुत है. वेल, अब उस झलक के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ae, एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू प्लान योर नेक्स्ट हॉलीडे टू. विजिट holidaymarket.ae या फिर कॉल कर सकते हो आप 800 अल्फ्रेड पर फॉर हॉलीडे पैकेजेस, स्टेकेशन एंड मच मोर. और भाई, लॉन्ग वीकेंड की तो ऐसे लिस्ट बनी हुई है, अभी से तैयारी शुरू कर लो. इस वेंसडे मंडे पार्ट 3 को अच्छे से यूज करो. अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Mina Jewelers. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
1: New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMIs starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Al Ain and Fujairah today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: Missed your morning buzz? Yes or no?
3: Herzlichen Glückwunsch, du fährst nach Deutschland.
4: I cannot understand.
5: Herzlichen Glückwunsch, du fährst nach Deutschland, bhai.
4: No, I cannot.
5: अरे रोशन सलियान, आप जा रहे हो जर्मनी. कैसा फील कर रहे हो इस वक्त बताओ सबको यूएई में. हाउ बैडली डू यू नीड दिस वेकेशन?
4: आई रियली नीडेड अ.
5: आप जोर से बोलो. कॉन्ग्रेचुलेशन यार रोशन सालियान, यू आर द विनर. हमने कॉल करना शुरू कर दिया है. कैसा इस वक्त फील कर रहे हो? हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू नर्वस? आर यू शेकिंग? टेल अस एवरीथिंग.
4: आई एम जस्ट शेकिंग राइट नाउ एंड नर्वस एज वेल. सुपर डुपर एक्साइटेड
5: नाउ. अब और कुछ नहीं करना, और कोई मेहनत नहीं करनी. सो
4: आई जस्ट वांट टू थैंक 106.2 टीम फॉर मेकिंग इट पॉसिबल एंड स्पेशल थैंक्स टू यू एज वेल.
5: Thank you very much.
4: Picking my call.
5: Thank you so
2: Energy
5: much.
2: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Evening rush का traffic build up शुरू हो चुका है. Sheikh Zayed Road पर there is heavy traffic on Marina and JLT, while Alkhil Road has slower stretches through Alcooz, Medan and Russell Khor. Hisar Street भी busy है around Alwarsha and Dubai Sports City. E311 पर अभी शुरू हो रहा है traffic around JVC and Arabian Ranches. कहीं और फंसे हो, let me know call करके 800-1062 पर.
8: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: झलक नहीं यार, साक्षात दर्शन होंगे। जरा जाओ तो सही 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल पर।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा है जाने का टाइम। पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम, या फिर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNIYEER। मैं कमेंट करने के ऑप्शंस दे रही हूँ। महबूबा महबूबा ट्रैक कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस वन। आज तक का ट्रैक बस कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2। कीप इट लॉक्ड।

पूछूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना करा दी तेरी ना

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill. And of course, the biggest news. Kal se petrol ke prices badhne wale hain. Kisi ne mujhe DM kiya. I'm not even kidding. Ke Mansi, aapne license kyu liya? Jab se aapne license liya hai, petrol ke prices badhte hi ja rahe hain. Mujhe bhi lag raha hai. It's me. 100% it's me. And aaj kya queue thi? I thought ke chalo thoda sa petrol dalwate hain. But wo queue dekhkar mujhe laga ki nahi, main is line mein nahi lag paungi. Filhal, aaj traffic again is extremely slow moving. And every single evening while you're in the jam, आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं. आई थिंक द बेस्ट वे टू फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहा है, गाने गाते हैं यहाँ पे. वी आर कारियोकिंग. अगर आपको गाना गाने का शौक है, आई आना आई. दिस इज योर प्लेटफॉर्म. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:07।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: What I'm about to tell you, don't tell anyone.
3: Why are you whispering?
2: Because if everyone finds out about Papa John's new pan pizza, good luck getting one.
3: For pizza? Have you seen it? Cheese all around, edge-to-edge toppings, crispy garlic parmesan crust.
2: My mouth just watered.
4: Try the new pan pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 35 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 30 फिलहाल, ह्यूमिडिटी है 57% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

निगम की आवाज, ऑफ कोर्स गाना भी पहचान ही लिया होगा आपने। अगर पहचान लिया है देन 800-1062 इज द नंबर फॉर द कारियोकी।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: A circuit अपने कार के AC की वाट लग गई। एकदम रापची के AC कहाँ मिलेगा? बता ना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
2: अलरास बोले तो।
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो AC स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन। हर ब्रांच में सबसे बेस्ट AC स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अल रास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो AC स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
4: ओए होए, 2 घंटे 17 मिनट का डिले शेक्जायद पे, ऊपर से पेट्रोल के प्राइसेस भी कल से बढ़ने वाले हैं। कैसे बंदा करेगा सेविंग? में कह रही हूँ कि कारपूल करना शुरू करना चाहिए हम सबको। हैवी ट्रैफिक शेक्जायद पर, देयर इज ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मर्ग टू मुहेसना। इनफैक्ट सिलिकॉन ओएसिस से इफ यू गोइंग टुवर्ड्स मर्डिफ, इट इज पैक्ड। 1 घंटा 50 मिनट का डिले है। नादल हमर, दुबई फेस्टिवल सिटी, क्रीक हार्बर, रसल खोर इंडस्ट्रियल एरिया, जद्दाफ, बम्बर टू बम्बर सिचुएशन, हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट। अगर आप जा रहे हैं From Dubai South, that is, you're going further towards Arabian branches, you're going towards Dubai Industrial City. बहुत ही slow moving traffic है। इसके अलावा हल्का पुल्का इसे 18 to 25 minute delay Discovery से towards Furjan. Anything else you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पर।
1: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
5: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
6: Goli nahi marenge saare ko. Keh ke lenge uski.
0: Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2.
2: The Beat of Bollywood.
3: ऑलराइट, वेंसडे की शाम है, पेट्रोल स्टेशन के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। फिलहाल हम कारियोकी कर रहे हैं, द बेस्ट वे इफ यू स्टक इन द ट्रैफिक जैम यू जैम विद अस। फिलहाल जॉइनिंग अस इज मिस्टर जिलानी। हाय।
4: हाय मानसी।
3: बड़ा पावरफुल नाम है आपका। When you walk into the petrol station, आपका नाम सुनकर ऐसा लगता है कि भाई जिलानी साहब तो फुल टैंक ही कराएंगे, और आज के जमाने में जो फुल टैंक करा रहा है मतलब सॉलिड आदमी है। करा लिया फुल टैंक?
4: नहीं अभी कराएंगे, शाम में कराएंगे मानसी।
3: आपको क्या जरूरत है, आप कल भरवाना, आप मिस्टर जिलानी हो। इट डजंट मैटर, एक दो दिरहम से इट्स नथिंग।
4: दो आई वर्क इन अ बैंक बट आई एम नॉट दैट मच रिच।
3: अरे योर नेम इज वेरी वेरी रिच, वेरी पावरफुल, जस्ट लाइक यू नो बॉलीवुड मूवीज में मिस्टर जिलानी की बेटी के आसपास कोई दिखना नहीं चाहिए। फिलहाल व्हाट डू यू डू? यू वर्क फॉर अ बैंक, यू जस्ट टोल्ड मी, बट यू आल्सो एंजॉय सिंगिंग आई एम अज्यूमिंग।
4: यस, आई एम काइंड ऑफ लाइक जस्ट टू बी अ काइंड ऑफ इनसाइडर, मीनिंग लाइक बस घर में ही गाता हूँ मैं, बाहर नहीं।
3: कोई बात नहीं, आज आपका डेब्यू कराते हैं। बाहर ढाई ढाई घंटे का ट्रैफिक है, बहुत सारी पब्लिक सुनेगी आज आपको, तो चलिए जिलानी जी की आवाज में सुनते हैं।
2: Karaoke.

0: ए दिल दीवाना कर डाला है ये दिल दीवाने को हाँ कोई I'm not getting much कर डाला
1: मैंने हाँ उसके शहर को छोड़ा
0: फिर भी
1: सीने में धड़कता है ये दिल लिरिक्स भूल गए हो सर आप पूरे के पूरे लिरिक्स याद नहीं रहते बट गाना ठीक ठाक गाया आपने थोड़ा दिल इधर उधर भटक रहा था आपका बट नॉट बैड फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग
0: यस यस यस दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दैट टू इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन द एयर
1: वेरी नाइस आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने अपना डेब्यू मेरे साथ किया है
0: yes.
1: तो बैंक में गाते रहते हो आप
0: नहीं
1: अच्छा बैंक वालों को पता नहीं है आपके टैलेंट के बारे में
0: हमें इतना चांस नहीं मिलता है गाने का
1: So your colleagues don't know about this hidden talent.
0: yes.
1: Which bank do you work for?
0: I work for IT. I'm in IT.
1: So people who work for IT branch, may please get hold of Mr. Jilani and make him sing more often. It was lovely talking to you, sir. You have a great evening.
0: Great. Thank you so much.
1: Thank you. Bye. Yeah, karaoke. Agar aapko lyrics yaad hai is gaane ke and you'd like to sing, give me a call 800-1062 par. Karaoke.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. While you're in the jam, we jam here with the karaoke. Joining us is Mr. Nagman. Good evening.
2: Good evening. Good evening, all the listeners.
1: Petrol भरवा लिया लगता है आपने. आप बहुत खुश sound कर रहे हो.
2: Petrol अभी मैं check कर रहा था. 200 kilometers short and it's fine. My time is more precious than waiting in line.
1: अच्छा, आपने पहले ही डलवा लिया था?
2: नहीं, yeah, it was a 4-5 days back. It was normal course of action. The police, they were talking in the bank, so I thought it's normal. It's what it is.
1: ये देखो, आपके colleagues बड़े future planning के साथ चलते हैं. 4-5 दिन पहले ही भरवा लिया. हमें भी बता देते सर. आप फिलहाल ये जो गाना है आपने पहचान लिया होगा, I'm sure, and I'm sure you love this song. So, अब हम नगमान की आवाज में सुनेंगे, क्योंकि जिलानी सर तो सारे लिरिक्स भूल गए थे. तो आई होप यू रिमेम्बर द लिरिक्स.
2: I do. You
1: All want right. To start from the, Can I play the track, sir?
2: Yeah.
0: Karaoke.
1: All right, here's your track.
2: Divana. Divana. Aje dil. Dil. Divana. दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला. हाँ दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल. मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल. ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल.
1: माइंड ब्लोइंग. आपने तो वो आह भी निकाली बहुत दिल से. एकदम प्रोफेशनल सिंगर आ चुके हैं. तो आई थिंक द सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट.
2: एब्सोल्युटली, एवरी सॉन्ग इज क्लोज टू माय हार्ट ऑफ दैट एरा.
1: ओह, 90s.
2: 90s, 2000, yeah, absolutely.
1: कभी आपने ऐसे कन्वर्टेबल चला के, सनग्लासेस लगा के, हवाओं में बाल उड़ाते हुए ये गाना गाया है?
2: रोड पे ड्राइव की है, नॉट कन्वर्टेबल, छोटी सी एसयूवी थी, आई ट्राइड बट कुछ हो नहीं सका. बाल फिर वो मुझे फैंस उड़ाने पड़े.
1: अक्सर ना लोगों के यहाँ के बाल अपने आप ही उड़ जाते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. But you sang beautifully. Thank you so much for entertaining us in the traffic jam.
2: Okay, take care.
1: Bye, Nagman.
2: Bye, bye.
1: Yeah, karaoke. If you also enjoy singing, you can send me a WhatsApp 0543091062 par.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: Bollywood.

0: Flights, hotels, transfers, visas, leave it to me. Everything your holiday needs, sorted. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या करें? वी प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 second रूल. यू गेट 5 seconds, आई गिव यू फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 second के अंदर. वी गॉट सानिया. हाय सानिया.
3: हेलो, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
3: गुड टू कनेक्ट बैक विद यू.
2: ओह, यू प्लेड दिस गेम बिफोर?
3: नो नो, नॉट दिस गेम. आई हैव मेट यू पर्सनली लास्ट ईयर फॉर दिवाली बैश, सो इट्स रियली अमेजिंग टू.
2: यस, वी आर प्लानिंग टू डू दैट अगेन, सो आई होप आई गेट टू सी यू देयर. वेयर आर यू स्टक फिलहाल ट्रैफिक में?
3: I am at airport terminal.
2: Hey?
3: I hope my line doesn't get disconnected once I enter the
2: airport
3: terminal.
2: Airport terminal?
3: The bridge, yeah.
2: अच्छा, I thought के airport के अंदर, मतलब flight board करने से पहले मैं इतनी famous हो गई हूँ, लोग game खेल रहे हैं.
3: But there are no doubt.
2: नहीं नहीं, इतने भी नहीं, लोग की फ्लाइट पकड़ने से पहले 5 second खेले, हो जाएगा एक दिन, वो भी हो जाएगा. फिलहाल सानिया, विल प्ले द 5 second रूल. यू ऑलरेडी नो द रूल, सो हियर वी गो.
1: 5 second रूल.
4: ओह यस.
2: क्विकली नेम 3 things दैट आर ब्लैक.
3: आईज, हेयर एंड
2: आयू. ऑलमोस्ट देयर. 3 रणबीर कपूर की मूवीज.
3: रणबीर कपूर या एनिमल, आई कुडंट रिकलेक्ट, सॉरी.
2: अभी आप एयरपोर्ट के पास हो, तो 3 ऐसी चीजें जो एयरपोर्ट पे ले जाना रेस्ट्रिक्टेड है. टाइम खत्म हो गया, फटाफट फटाफट. 3 गाने जिनमें आता है द वर्ड इश्क.
3: इश्क विश प्यार व्यार, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं
2: है. नहीं है. तीन रियलिटी शोज के नाम.
3: बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी एंड इंडियन आइडल.
2: ये रियलिटी शो फैन है ना?
3: नहीं, बिग बॉस. बिग बॉस इज द ओनली वन आई नो.
2: हाँ, आई लव बिग बॉस. आई लव वॉचिंग पीपल फाइट ऑन स्क्रीन, दैट्स माई गिल्टी प्लेजर. बिग बॉस हुआ, लॉकअप हुआ, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स कलेश, आई एम इन फॉर इट. 3 things दैट यूड लाइक टू चेंज अबाउट योर बॉस.
3: किरकिर
2: करता है कि करती है?
3: बहुत किरकिर है.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: हिट और मिस था सानिया, मोस्ट ऑफ योर आंसर्स मिस हो गए थे, बट आई होप यू एंजॉयड द गेम.
3: Yes, of course. Good to connect with you again.
2: Oh, that's so sweet of you. You drive safe and thank you so much.
3: Thank you, dear.
2: Bye.
3: Take care, bye.
2: Yeah, 5 second rule. मैंने कहा ना, लगता आसान है नहीं. अगर आपने खेलना है तो 800-1062 is the number to dial.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: I can't wait.
2: Okay. 3, 2, 1.
1: Yes!
3: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
1: Whoa, cheese all around.
2: And edge-to-edge toppings.
1: And crispy garlic parmesan crust, too.
2: Let me try.
1: Order your own.
3: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Missed your morning buzz?
4: Utha le re deva, utha le re papa.
0: Yes, suno.
5: Herzlichen Glückwunsch, du fast nach Deutschland.
6: I cannot understand.
4: Herzlichen Glückwunsch, du fast nach Deutschland, bhai.
6: No, I cannot.
4: Arre Roshan Salian, aap ja rahe ho Germany.
6: Yeah. Yes.
4: Hey. Kaisa feel kar rahe ho is waqt? Batao sabko UAE mein. How bad did you need this vacation?
6: I really needed a.
4: आप जोर से बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन यार रोशन सालियान, यू आर द विनर. हमने कॉल करना शुरू कर दिया है. कैसा इस वक्त फील कर रहे हो? हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू नर्वस? आर यू शेकिंग? टेल अस एवरीथिंग.
6: आई एम जस्ट शेकिंग राइट नाउ एंड नर्वस एज वेल. Yeah. But super duper excited.
3: Now, ab aur kuch nahi karna, aur koi mehnat nahi karni. So
6: I just want to thank 106.2 team for making it possible, and special thanks to you as well.
3: Thank you very much.
6: Picking my call.
3: Thank you.
0: Energy
3: so much.
0: And action Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
1: 35 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 30. फिलहाल ह्यूमिडिटी 61% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल। मैं हूँ मानसी। ट्रैफिक का हाल बेहाल। फिलहाल सालिक देने के बावजूद इफ्राज जो है वो फंस गए हैं जद्दाफ में। हाय इफ्राज, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मानसी।
1: ये तो बड़ा खराब लग रहा होगा ना, सालिक भी दिया और फिर ट्रैफिक भी मिला।
2: हाँ यार, क्या
1: क्या कहते हैं,
2: मैं दूसरे रोड से जाता हूँ। हाँ। आज ट्राई किया मैं इस रोड से जाता हूँ बोल के, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएगी बोल के, लेकिन ये तो सेम ही है।
1: वही ना, कभी कभार लगता है कि चलो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न्स मिलेंगे, बट कुछ फायदा नहीं हुआ है। करते क्या आप इफ्राज?
2: I'm a salesman.
1: Oh, very nice. So what do you sell?
2: स्विच सॉकेट जो ऑन ऑफ करते हो ना आप घर पे।
1: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हर किसी को जरूरत होती है ऑन ऑफ, खरीदते ही होंगे लोग।
2: फ्री में मार्केटिंग हो रही है।
1: हाँ, देखो कुछ ना कुछ फायदा हो गया ना फोन लगाने का।
2: So,
1: इफ्राज, हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, आपने 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। रेडियो?
0: 5 सेकंड रूल।
3: Oh, yeah.
1: 3 सलमान खान की मूवीज।
2: दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3।
1: ये देखो, इसलिए सालिक में ट्रैफिक मिला है इस बंदे को। इसीलिए मिला है, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3। नहीं, राइट तो है, बट ये क्या है, शॉर्टकट है ये। इसलिए ने सालिक में भी ट्रैफिक मिलता है। 3 रीजंस बताइए कि कोई शादी क्यों करे।
2: गुड वाइफ, गुड बेबी एंड गुड लाइफ।
1: गुड लाइफ, गुड वाइफ, गुड बेबी, आपको मिल गए तीनों? तीनों गुड। यही रहते हैं कि अपनी कंट्री में रहते हैं?
2: They stay with me here.
1: 3 ऐसी चीजें जो बिरयानी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
2: आलू, लौंग, इलायची।
1: हाँ, आपको आलू वाली बिरयानी नहीं अच्छी लगती?
2: मुझे बिरयानी बिरयानी होती है यार, उसमें आलू क्या है
1: बेचारा। आलू कहीं भी फिट हो जाता है, चाहे वो मीट के साथ हो, सब्जी के साथ हो, बड़ा क्यूट होता है आलू, एडजस्टिंग है।
2: करेक्ट, वो सबके साथ एक्सेप्टेबल है, बिरयानी समथिंग एल्स, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग।
1: आई लव आलू इन बिरयानी। 3 गाने जिनमें दिल आता है।
2: हम
1: तीन ऐसे झूठ जो आप अपनी बीवी को बोलते हैं टू अवॉइड योर ससुराल।
2: काम है, बिजी हूँ। काम है, बिजी हूँ, नहीं आ सकता।
1: इनमें से कौन सा झूठ वो मानती है?
2: कोई भी नहीं।
1: हाँ, तो क्या आपको अच्छे नहीं लगते ससुराल वाले अपने? कौन ज्यादा खराब लगता है, ससुर के साथ?
2: वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोथ आर देयर वेरी गुड। नो, उनके रिलेटिव्स होते हैं ना जो वो लोग।
1: बट आई हैव टू से, यू प्लेड रियली रियली वेल, बहुत अच्छा खेला आपने।
2: Thank you.
1: आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पे।

0: जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: holidaymarkets.ae I've got unbeatable holiday deals, staycations, visas, and your own expert travel agent waiting. Where are we going? Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: इट्स 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 30, प्रिटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 63% पर।
1: अलराज ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलराज.me। बिग 106.2 बिग।

0: unbeatable holiday deals, staycations, visas, and your own expert travel agent waiting. Where are we going? Visit holidaymarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: All right, I have another name जिसने अपनी एक सीट सिक्योर कर ली है टू दिस फैंटास्टिक ट्रिप दैट वी आर टेकिंग टू जर्मनी. अब जरा फोन लगाते हैं, आई होप फोन उठा लिया जाए, क्योंकि अगर ये फोन मिस हो गया तो ये सारी जिंदगी का दुख हो सकता है. यू नो, फ्री की चीजें मिस होती हैं तो खराब लगता है, बट अगर जर्मनी की फ्री ट्रिप मिस हो जाए तो खराब नहीं लगता है, सारी जिंदगी का झटका लगता है. सो लेट्स सी इफ आई मैनेज टू सरप्राइज हर. Hello, is that Sudeeksha?
3: Yeah, hi, this is Sudeeksha.
2: Hi, Sudeeksha, you're busy right now?
3: Not really, I'm just on my way home.
2: Oh, you're driving?
3: Yes.
2: Oh, can you park your car somewhere?
3: Yes, I can. Could you just give me a minute or so?
2: Where are you right now? Sheikh Zayed?
3: Sheikh Zayed pe nahi, I'm actually on Vassal Road, so it's a bit difficult to find parking.
2: I know.
3: I'm just stopping at the side of the road.
2: Okay.
3: Hopefully soon.
2: Hogi park?
3: Yes, almost there. Almost.
2: Okay. Okay, you remember, right? We spoke a while ago and you were shortlisted for this trip to Germany.
3: Mm-hmm.
2: I have to say, sorry, Sudeeksha.
3: Oh. Am I not selected anymore?
2: Unfortunately. You are flying with us to Germany!
3: Oh my god,
2: Sudeeksha! Time to take chutti from work and enjoy winters in Germany!
3: Oh my god, hell yeah!
2: मेरी acting कैसी लगी? मुझे खुद के लग रहा था मैं कितनी खराब एक्टिंग कर रही हूँ. मैंने बोला चल, शी इज प्लेइंग अलोंग तो चलेगा. बट सुदीक्षा, हाउ एक्साइटेड आर यू?
3: आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. आई हैव नेवर बीन टू अ यूरोपियन कंट्री.
2: ओह, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट शेंगेन वीजा.
3: Yeah.
2: ओए होए, डेब्यू तो कमाल हो रहा है सुदीक्षा का. सो फर्स्ट पर्सन यू गो टू गिव अ कॉल एंड इन्फॉर्म कौन होने वाला है. सोच रही है ये. बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं क्या?
3: नहीं, if I had one, I would probably tell them, but नहीं.
2: Don't worry, we will now find the one in Germany. Let's make this trip a trip to remember for Sudeeksha. How does it feel? How does it feel? Is it worth taking the double parking, double hazard जलाने का risk? वो भी Vassal Road पे. आज तो fine भी आ गया तो चलेगा, है ना? जर्मनी की ट्रिप जीती है यार, थोड़ा 400-500 का फाइन चलता है.
3: नहीं चलता है, उसमें अभी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए आई एंटर्ड दिस कॉन्टेस्ट.
2: वाओ, बट सी द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर.
3: Absolutely, absolutely.
2: Congratulations, can't wait to travel with you. We'll have so much fun.
3: I know, I can't wait. Thank you so much for this opportunity.
2: You're most welcome. All the best. See you in Germany.
3: Thank you. See you.
2: Bye.
3: Bye.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: One big ticket brings many chances to win.
3: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
2: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: I'm so happy कि मैं शेख जायद पे नहीं हूँ. अगर आप भी नहीं हो तो यू शुड फील वेरी वेरी लकी टुडे. स्टिल 1 hour 40 minute डिले. इट इज ऑल्सो पैक्ड इफ यू आर ऑन फहीदी उदमैथा भटबाई साइड. बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है. ट्रैफिक मूविंग एक्सट्रीमली स्लो एट द मोमेंट. अगर आप जुमेरा रोड पे हैं, स्पेशली नियर मकाटो जहाँ मैं फंसी थी परसों, अगर आप उस रूट पे हैं तो बहुत ज्यादा पैची ट्रैफिक है. देयर इज ऑल्सो ट्रैफिक नियर द दुबई वाटर कनाल. हैवी ट्रैफिक फर्स्ट अलखेल पे भी एंड देयर इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल ट्रैफिक नियर अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया. प्लस आपको थोड़ा बहुत ही सही 15 से 20 मिनट का डिले मिलेगा वर्षा वन के पास भी. इसके अलावा कहीं अटके हो तो मुझे बताओ 800-1062 पर.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big 106.2. Big 106.2. The beat.

0: से तेज हो रही है सबकी क्योंकि कल से पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग अप, बट देयर इज अ वे वेयर यू कुड सेव मनी.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: प्राइस फ्यूल का बड़ा है बट गाड़ी में तो आप पैसे बचा सकते हो ना. नाउ यू कैन लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान with selfdrive.ae. Do visit them. They've got some fantastic deals. selfdrive.ae it is. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

मनीष बागची, फहीम अब्दुल्ला एंड ऑफकोर्स आयुष्मान खुराना, जिनकी दो मूवीज आ रही हैं, एक उड़ता तीर और एक ये प्रेम मोलिया। आई एम एक्साइटेड फॉर ये प्रेम मुझे मोलिया बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ राजश्री फ्रॉम हम आपके हैं कौन, इनफैक्ट फ्रॉम मैंने प्यार किया टू विवाह। आई री वॉच सूरज बरजाते की मूवीज एवरी नाउ एंड देन। फिलहाल कमिंग अप ब्रेक के उस पार आपके पास 5 मिनट है, अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है, आई विल बी रनिंग द रैंडमाइजर। शॉर्टलिस्ट होना चाहते हो फॉर दिस ट्रिप टू जर्मनी, देन गेट सेट टू व्हाट्सएपिंग बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062।

0: Hollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Mina Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: किसने अपनी सीट रिजर्व कर ली है फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी? कॉल करती हूँ, ये इतनी बड़ी खुशखबरी जिसको सुनाने के लिए मैं ही इतनी एक्साइटेड हूँ कि कौन जाने वाला है। लेट मी कॉल एंड लेट्स सी वो फोन भी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हेलो
5: हेलो
4: हेलो, हाय हेतल।
5: हाय अपनी, हाउ आर यू?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका दिन?
5: आई एम वेरी गुड। हेक्टिक चल रहा है, मीटिंग्स।
4: ओहो, अभी भी मीटिंग में हो क्या आप?
5: नहीं अभी नहीं हूँ मीटिंग।
4: बैठे हो? खड़े हो?
5: बैठे हूँ।
4: वेरी नाइस, क्योंकि आप चल रहे हो हमारे साथ बिग चेक इन टू जर्मनी।
5: नो वे।
4: अरे नहीं भाई, सच में बता रही हूँ मैं, आई एम नॉट किडिंग।
5: आई कांट प्रोसेस इट, प्रोसेस ही नहीं हो रहा मेरे से।
4: देखो कितना इजी था भाई, देखो अभी हेक्टिक, देखो हमने बेस्ट बना दिया कि नहीं।
5: डे ने योर बेस्ट बना दिया, यू मेड माय योर।
4: कंग्रेचुलेशंस हेतल वंस अगेन एंड सी यू ऑन द ट्रिप नाउ। यार बहुत मजा करने वाले हैं।
5: थैंक यू सो सो सो मच फॉर द
0: ऑपर्चुनिटी। चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद अवनी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: ए जल्दी हटा तेरा खटारा।
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Still slow moving, 1 hour 30 minutes ka delay exact par. There's heavy traffic, Ashav. Traffic trailing very, very slow at the moment. Agar aap Nadal Hammer se ja rahe Rashidiya, Varka se Murdiff, Murdiff to Mohisna, all the way towards Etihad Mall, 1 hour ka delay hai. There's traffic which is kind of standstill at the moment near Sathwa. Plus, if you're on the Jumeirah Road, wahan bhi patchy traffic, 12 se 15 minute ka delay. Iske alawa kahin atke ho, batao 800-1062 par.
2: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है।
3: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Exactly, we're flying you to Germany and आपने अभी सुना कि कैसे सुदीक्षा ने एक सीट फाइनल कर ली है. आप भी अपनी सीट फाइनल कर सकते हैं, पर उससे पहले शॉर्टलिस्ट होना बहुत जरूरी है, रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. एंड फॉर दैट यू नीड टू सेंड अस अ व्हाट्सएप बिग चेक इन पूरा नाम टू 0543091062. फिलहाल रैंडमाइजर ने ढूंढ निकाला है मिस्टर हिमांशु को, जो आई थिंक डिनर पे है बाहर. अरे वाह, मिड वीक डिनर बाहर, क्या ओकेजन है?
2: बेसिकली मेरे भाई को एक बेबी बॉर्न हुआ है.
1: आप चाचा बन गए, कंग्रेचुलेशंस चाचू.
2: नो बेसिकली ताऊ.
1: अच्छा, साउंड तो चाचा जैसे कर रहे हो, तो ताऊ जी मुबारक हो.
2: थैंक यू सो मच.
1: हाय, आज तो दिन बड़ा अच्छा है, वहाँ पे बेबी आया, यहाँ ताऊ जी का नंबर लग गया जर्मनी जाने का.
2: बेसिकली वही खुशी खुशी में वी आर सेलिब्रेटिंग.
1: Very nice. Yeah, congratulate them from my side also.
2: Thank you so much.
1: So, Himanshu, what do you do?
2: So, basically, I work as a designer in Myanmar.
1: Oh, nice. So, you design the clothes.
2: Yeah, this slash concept.
1: A fashion designer. Oh, you love Europe. Have you been to Germany before?
2: No. If I got this opportunity, it's my first time.
1: तो आप मतलब फैशन वैशन में हो, तो आप तो जज करोगे सबको कि इसका एयरपोर्ट लोग अच्छा नहीं है.
2: नॉट लाइक दैट एक्चुअली.
1: नहीं,
2: मैं अपना लुक अच्छा करके जाऊंगा.
1: स्ट्रेस हो जाएगी तो पूरी की पूरी. अगर हिमांशु हमारे साथ जाएगा, रोज सुबह उठ के चेक करेगा, ये देखो बड़े आए तैयार होने वाले. फिलहाल हिमांशु, आई एम गिविंग यू चांस शॉर्टलिस्ट होने का. वेरी वेरी सिंपल, आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन and I'll be testing your German knowledge. If you manage to give me the right answer, you will be shortlisted.
2: Okay.
1: All right, all the very best. देखते हैं ताऊ जी जो है सही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: All right, Himanshu, your question is, which two famous German brothers collected and published world famous fairy tales like Cinderella, Hansel and Gretel? Aapka option hai the Wright brothers, the Mario brothers, or the Brothers Grimm.
2: Brother Grimm, the third one.
1: Ye tukka maar raha hai na Tao ji?
2: No.
1: No, jhootu.
2: Are you sure you were correct answer?
1: You are asking me if I'm sure is this the correct answer? मैंने ही सवाल आपसे पूछा है. सो यस, इट इज द राइट आंसर. एंड विद दैट यू शॉर्टलिस्टेड. कांग्रेचुलेशंस. फिंगर्स क्रॉस, होपफुली द न्यू लिटिल बॉर्न इज लकी फॉर यू. एंड द नेक्स्ट कॉल दैट यू गेट फ्रॉम अस इज पैक योर बैग्स एंड गेट इनटू सम शॉपिंग फॉर हिम फ्रॉम जर्मनी.
2: फॉर श्योर.
1: ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. नाम क्या रखा है?
2: नॉट डिसाइडेड एक्चुअली.
1: तो क्या बुलाते हो? बेबी.
2: Baby boy.
1: Very nice. कितने दिन हो गए?
2: Just born actually, like 1 hour ago.
1: तो 1 hour ago आप उन्हें restaurant ले आए?
2: No. अच्छा. Basically, my brother he's in Canada.
1: Oh, so your family is celebrating here?
2: Yeah.
1: Nice. Give my love to the baby boy. Yes. Bye.
2: For sure.
1: Bye, Manshu. Bye.
2: Bye bye. Yeah.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
2: Hey,

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. Welcome to the last hour of The Big Thrill. And of course, great news for people who love watching celebrity shows like Coffee with Karan. I love the show. मतलब मैं तो पुराने seasons देखती हूँ. कॉफी विद करण और आपकी और मेरी डाइट में एक सिमिलैरिटी है. जब हम कुछ मीठा खाते हैं, कुछ पिज्ज़ा या कुछ जंक खाते हैं, हम बोलते हैं बस ये लास्ट है, अब इसके बाद नहीं. करण जौहर भी हर सीजन के बाद बोलते हैं ये मेरा लास्ट सीजन है, और फिर से एक और सीजन आ जाता है. वी आर नॉट कंप्लेनिंग इन दिस टाइम. द कॉम्बिनेशन ऑफ गेस्ट, इट इज माइंड ब्लोइंग. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।

0: टेम्परेचर 33 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 30. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 69% पर.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Europe? Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: कमाल हैक है ये मम्मियों के लिए जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं. ये स्टोरी वायरल जा रही है. सो दिस मॉम शी वाज फेड अप ऑफ रिमाइंडिंग हर चिल्ड्रन टू डू सर्टेन चोर्स एंड वो रोज़ याद दिलाती थी बच्चे करते नहीं थे. तो उन्होंने एक तरीका निकाला. रोज़ सुबह उठ के उन्होंने वो सारे काम जो बच्चों से कराने होते थे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिए एज ए लिस्ट और उसके बाद लिखा अगर ये चेक करने का टाइम है तुम्हारे पास तो तुम ये काम भी फिनिश कर सकते हो. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है मम्मी ने. मतलब मम्मियाँ कुछ भी कर सकती हैं मैं मान गई हूँ. सो दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. इनफैक्ट ऑफिस में भी अगर आपके इंटर्न्स काम नहीं कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं मैं कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो क्योंकि लोग वो पहले देखेंगे रादर देन सीइंग ऑफिस की ईमेल.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

This was Radhika Apte's debut, if you remember. अब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है कि नहीं, बट ये मूवी मैंने थिएटर में देखी थी, शोर इन द सिटी, तुषार कपूर एंड राधिका आप्टे. फिलहाल शोर ये है कि कॉफी विद करण का ये सीजन लास्ट होने वाला है, एंड आई थिंक पिछले सीजन भी करण जौहर ने कहा था कि ये लास्ट सीजन होगा, बट इस बार कहा कि नहीं, पक्का प्रॉमिस, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सीजन. एंड ही इज ऑल्सो मेड अ फेयरवेल प्रोमो. द फाइनल सीजन स्टार्ट्स ऑन द 14th ऑफ अक्टूबर, एंड करण सेड दैट आफ्टर दिस सीजन ही इज गोइंग टू फोकस ऑन मेकिंग मूवीज. सो या, coming to an end after 22 years. I love this show. I rewatch the show every now and then on YouTube. But this season, I'm very excited for two guests jo ek saath aa rahe hain. That is Vicky Kaushal and Diljit Dosanjh. Bahut maza aane wala hai. Can't wait for the finale. And I hope this is just sher aaya. Agle saal Karan Johar ek aur season ke saath aa hi jaye.

0: Trill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time to say bye bye. वैसे ये गाने सुन के you know लग रहा है कि एक जमाना था जब मैं wait करती थी कि weekend आ रहा है और मैं party करूँगी. I think I have changed and we all do, right? For me now, party is on a Friday evening, get back home. Make, not even order, make my favorite khana and binge watch a show that I wanted to. Aur aajkal ek nayi hobby hai meri, khana banane ke saath saath. I think ye ek trend bhi chal raha hai social media pe. If you're a fellow millennial, you'll understand. Log ise grandma hobbies kehte hain. Haan, main hoon grandma. Mujhe aajkal plants lagane ka naya shauk hua hai. I don't have a green thumb or a green finger, whatever you call. Main apne ghar lekar aati hoon unki jaan lene ke liye. Ek bhi nahi bachta hai. But main bahut mehnat kar rahi hoon. Matlab sare TikTok, sare Instagram reels sirf aur sirf mere algorithm mein about how to take care of plants है. काफ़ी take care करना पड़ता है और जितना आजकल मैं plants की take care कर रही हूँ उतनी मैं खुद की भी नहीं कर रही हूँ. तो ये मेरी नई hobby है. I was just sitting and thinking the other day how we change in every phase of our life. ना there was a time जब हम party करने के लिए घर से झूठ बोल के जाते थे, फिर हम university चले गए, we could party all night, do whatever and still go back to uni the next day. फिर एक time आता है कि आपके पास सब कुछ करने का दिल ही नहीं होता है बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी एनी मोर, यू हैव डन एवरीथिंग. सो या आई लव दिस बोरिंग वीकेंड वाली फील्स जो मैं आजकल एंजॉय कर रही हूँ. फिलहाल काफी ज्ञान दे दिया मैंने आपको, अब यहाँ से मेरा बाय बाय कहने का टाइम. आई सी यू टुमारो, अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. ऑल्सो आई एम नॉट बोरिंग व्हेन आई ट्रैवल बाय द वे. इफ यू वांट टू ट्रैवल विद अस 106.2 बिग एफएम इट इज, गो एंड चेक अस आउट. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई सी यू टुमारो.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: पानी मत होश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.